0: क्लास तुम कुफा भी
1: बमंगा तक आम कोमिन नंबुमंगा केल संसायम बाई सेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन सायने नंबुमाइंस अनोटन समास निनिन नमी चट्टम सोफा अंड्रासों अंड्रासला टेनिस फिजरा ना ताने ते पियांट चट्टे ओमनी रोकूल ते ओयों ना तंबले लेफोरुन निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते ओटों फिट्टीन ले प्रेस नो इस मुझांस ते ना प्रेस नो वो चुने करते मोबाइल ते फिर पेरां फुट्स ले सुरात ना ते इंटेंस से सेंबा सुरात प्रेस नो ते सान ना तो ने वे अंदो सुरात ना रा वो चुने ये वेतना मेनो तुझी सन्ना तो उन रकाये सिस्टी लो इस